सतरन गोपाल मोह बद कियो। गड़ गड़ के अंतर की जानत, पले बरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचरे अस्तूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दो पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पिछान कट कट के बड़ बड़ की जान। जावद कर करां कर तारा, पर जा तर तब दे अपारा। जाबा कर कर तो कम हूं, तुम तो मिलत दे तर सब हूं। जेते बन से सब तारे, आवे अपनी बूझो चारे। तुम सब ही तेरा तनरालम, जान बे पे दरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील नाद संभ। ताका मोड़ चारत भेदा, जाको पहेव न पावत बेदा। ताको गर्पान मानत, महा मोड़ का पे न जानत। महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चीनत न फेव। आवे अपनी बुद्ध है जेती, बनत पेन पेन तो है तेती। तुमरा लखन जाए पसारा, के वैसा प्रथम संसारा। एक रूपा नूप सरूपा, रंग प्योरा कहीं पूपा। अंड जेर से तरिकिनी, उतपो खान बहोर रच दीनी। कहूं भूरा जहां बैठा, कहूं सिंप्यो शंकर कैठा। सवरी से दिखाए चंबो, आज गास रू से अंबो। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दूर जिते उठत पाता, सकल मलेश करो रणगाता। जया तू सब सरणी परे, तिनके दुष्ट दूत है मरे। पुरुजन पा परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निट नहीं आए हैं। रचा होए ताए सब काला, दुष्ट रिटरे तरकाला। कृपा दृतन जाए न हर हो, ताके तम तरंग में हर हो। रेद सिद्ध कर्मो सब हो ही, दूस ऐसा सके ना कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फाते ताए हबारा। जिनर नाम त्यारो कहा, दार दूदो तेरा। खड़ग के मैं शरण त्यारी, आप हा दे लो अबारी। सर्वठोर महो सहाई, दोष्ट दो ते लो बचाई। सवैया पाएंगे जब ते तुम रे, तब ते गुआ तरे नहीं आने। राम रही पुराण कुरान ने कह, मत एक न माने। सिमरत शास्त्र बेसब, बहु भेद के हम एक न जाने। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड के, गहो तुम्हारो द्वार। बाहें गह की लाज अस, गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा, नंद क्यों ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सीती, मन वजियां वादाइयां। राव रतन परवार परियां, शब्द गामने आईया। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कहे नान गया आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ये मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले।
हर ना रहो तो मन मेरे दूसा विसारना, अंगीकार हो करे तेरा कार सब सवारना। सब ना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, कर दं तेरे सब के जय दे सो पावे। सदा सिसला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द घनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा साब गवाइया, कर शां सुख मन आए वसया जिन इशां साब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जे दियां बड़े आईया, कहे नानक सुनो संतो शब तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार हो, वाजे पंच शब्द कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पाई दो तुद वास कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुझिन को से नाम हर के लागे। कहे नान ते सुख हुआ तित कार अनहद वाजे, आनंद सुनो वड पागीओ सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पै स्वर से पूरे गुर ते जानी, सुनते पनीत कहते पवित सतगुर आपर पूरे। बिनवंत नान गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संधो विचारो। अमृत नाम ठाकर का पैओ जिसका सब सदारो, जे को खावे जे को पूंचै तिसका होय अदारो। ए वस्त इन जाई नित निराकुर तारो, तम संसार चन लग तरीय सब नान ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जा तो नाही मैनो जो कि तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस प्योई। तरस पिया मेरा मत होई सतगुर सजन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया। तरस पिया मेरा मत होई सतगुर सजन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी क्या ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री बहुत जी सहाय वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक है गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया कार नौन दे आवे ताए सब ताई हुई सहाय दसवीं पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब ताई हुई सहाय दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान त्रिकाल से सब बोलो जी वाहे पंजा प्यारियां चौं सब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां शहीद सिंघां सिंघणियां जिन नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई देख अंडर कीता तिना गुरमो प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान त्रिकाल से सब बोलो जी वाहे जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म सी दिते बांध बांध कटाए चरखड़िया ते चढ़े आ रहे नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विच उबाले के खोपरियां लोहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल ले कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असहे ते कह सहार दे शीदो सिकित के सा सुआसा संग नभाई धर्म नहीं हारिया तिना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान त्रिखालस सब बोलो जी वाह पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे जी का ध्यान दर खालस सब बोलो जी वाह प्रथम खालस जी की अरदास है जी सरबत खालस जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुखो है जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियाय दे ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल वाले खालस सब बोलो जी वाह सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार खालस जी के बोल वाले खालस सब बोलो जी वाह सिखा ना मन नीवा मात उची मादे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामे गुरु ईम निवास जी पातशाह पंथ दे सदा सहाय दे तार पिता जी हो श्री ननकाणा साहिब गुरुद्वारे जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणिया दे माण नताणिया दे ताण ने उल्टियां दी ओण आसरे दे आसरा तान श्री गुरु ग्रंथ साहिब च पातशाह जी आप दी पार बख्श रहमत कृपा दा सिका आप दे हजूर सोधर दे दीवान सजे शब्द चौंक च कीर्तन सोध रह सब दे पाठ होए ने अखर दा वादा कट्टा पुजो दी खिमा बख्शनी पढ़ी सुनी बाणी दा पाव सरबत संगतां दे हिरदिया विच वसाउणा सरबत संगतां दी हाजरी तेल फुल पटावां रस्ता आदि अपने दर ते परवानगी सिर ते मेहर प्रयात करना तंदुरुस्तियां बख्शनियां परिवारां विच सुख वरतौणा सरबत संगतां दे कारोबार दी बरकतां बख्शनियां पंथ दे सिर ते मेहर प्रयात करना दरों करों वरसाए नगर बिलासपुर दीआं संगतां भाई इंद्रजीत सिंह पनेसर भाई अमरदीप सरोवा परिवारों वालों शुकराने वजो दाता जी श्री खंड प्रसाद साहब कीर्तन गुरु के लंगर की सेवा हो रही है मेहरकानी दाता जी परिवारों की सेवा थाए पौनी पार्टी सिंह सिंघणिया के सिर ते मेहर प्रयात रखे शुद्ध बाणी पढ़न का बल बख्शना परिवारों को बाणी सुन का सेवा करने का बल बना अपने इस कार्य को मेहर प्रयात रखे संपूर्ण करना अते पढ़ी सुनी बाणी का भाव समूह परिवारों के हिरदिया विच वसाउणा गुरु के लंगर की सेवा हो रही मेहरकानी दाता जी परिवारों की सेवा थाए पौनी अपने कार्य नूं मेहर प्रयास संपूर्ण करना दरों करों वरसाए मनवीर सिंह मिगलानी वालों अज दी देख दी सेवा हो रही है जमन दिन की खुशी में दाता जी मेहर करनी मनवीर सिंह दे सिर ते मेहर प्रयास चढ़ती कला बनी सेवा थाए पाउणी शुभ भावना पूरी करनी बीबी अमृत कौर वालों अपने वीर बिक्रम सिंह की तंदुरुस्ती चढ़ती कला लई अरदास बेनती है मेहर करनी बिक्रम सिंह दे सिर ते मेहर प्रयास थकना तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला गुरसिख जीवन बख्शना परिवार की सेवा थाए पाउणी शुभ भावना पूरी समूह भैणा वालों अपने सुरबत वीरां दी चढ़दी कला लई आप दे चरणां विच अरदास बेनती है मेहर करनी दी भैण भरावां दा प्यार आउण विच जीवन दे हर प्रकार दे सुख प्रदान करने अते इस दाता जी भैण भरा नूं
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

दर्शन देखण को तौरी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करथे मन तन ते सब गल बखनासो। पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाथे अवनासी बिमल को जासा। संत पर संत मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणता। शांत सहज सुख मन उपजो कूड़

भजन मन हर रखा जल रहाओ, छोड़ सियाण बहु चितनाई, दुइ कर जोड़ साथ मग चालो, सिमर स्वामी अंतर जामे, मानुख देखा अह उत्तम फालो, बेद बखियाण करत साधु जना।

गुण गावद जोथ मनासी काम क्रोध प्रिंसे मद ठीठे असन भय साचौ रंग राथे जन मन बोर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेथे संत दयाल जाने सावा झूठे नाम रथन पायो छन नानको नाम बिहुण चले सम उठे टोठी महला पंजमा साध संग हर हर नाम जतारा सहज आनंद हो बैथन राथी अंकुर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेठ अमण पाखी जाको अंत न पाना बारा करखे काल योजन अपना वेखो सागर संसारा जन मन काटे गुर बछनी बहुन संकट द्वारा नानक सन गही स्वामी खी पुने पुने नमस्कारा टोठी महला फंजमा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसे सब दुख नहाओ कोट जन्म के कल विख नाथ सिमरत पावन तन मनो सुख देख स्वरूप पूर्ण पई आसा दर्शन भेटत उथनी भुख जार पदार्थ अष्ट महासतो काम तीन पार जात हर हर रुख नानक सन गहि सुख साकर जन मन फिर गर्भ न धोखा तो।

ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्राप तेरी, कर कृपा रखो मेरी लाज पते। धन वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल बाणी भगत नामदेव जी की। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, सफल जन्म मो कौ गुर की ना, दुख विसार सुख अंतर लीना।

0: जाग जीवन स्यों जियो समाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सतसंगी जिन्हों वड़ पा गए, जिथे आप जिया ने अमृत वेले नूं मुख रखते हैं, शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाग की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने सरवण किए हैं। कल रोज तो गुरद्वारा साहब विखे नगर बिलासपुर दीयां संगतां वल्लों भाई इंद्रजीत सिंह पनेसर परिवार ते भाई अमरदीप सिंह सरोह परिवार वल्लों तीन श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होए ने, जिन्हां दे भोग पल के सवेरे 9:30 बजे पैणगे, उपरंत हफ्तावारी दीवान सजणगे। परिवारां ते नगर निवासियां वल्लों बेनती आप जी ने दर्शन देण दी कृपालता करनी जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदे हां, विशेष गुरमत सैमीनार पढ़ के 1 बजे तो 3 बजे तक गुरद्वारा साहिब विखे होणगे, जिस विच भाई गुरशरण सिंह जी, ज्ञानी शिवतेग सिंह ते भाई नरेंद्रपाल सिंह जी आप जी नूं गुरमत विचारां नाल जोड़नगे। उपरंत संगतां वल्लों पुछे गए सवालों के जवाब भी संबंधित बुलारियां वल्लों दित्ते जाणगे। इसे लड़ी के तहत ही गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्ण बाणी की गुरबाणी पाठ संथ्या की क्लास 1 सितंबर तो आरंभ होने जा रही है। जिन्हां भी संगतां ने गुरबाणी पाठ संथ्या की क्लास अटेंड करनी हो, अपना नाम ते फोन नंबर बार डेस्क उत्ते लिखाउण की कृपालता करनी जी। ये क्लास हर हफ्ते सोमवार तो वीरवार तक शाम 7 बजे तो 8 बजे तक होया करेगी, जिस विच आप संगतां नूं गुरबाणी पाठ संथ्या करवाई जाएगी। आप संगतां ने नाम ते फोन नंबर नोट करवाने की कृपालता करनी जी। अमृत संचार 13 सितंबर दिन एतवार सवेरे 9:30 बजे होंगे। जिन्ना बिलाखियां ने खंडे बाटे की पुल छकनी हो भी अपना नाम ते फोन नंबर नोट करवाने की कृपालता करनी, ताकि उन्हां वास्ते उचे उचे प्रबंध किए जा सकन। आस है आप जी बेनती प्रवान करोगे। समा है पावन मुख वाक की कथा विचार दा। सेवा निभाउणगे भाई गुरशरण सिंह जी चीमा। आओ तिन्हां पासों पावन मुख वाक की कथा विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम।

आजो प्रभखें गुण गावै। बलावल मां अष्टपथिया महला पहला, कर दसमा एक ओहंकार सतगुर प्रसाद। आओ निकट वसें देखें सब सोई, करमुख बिरला बूझै कोई। बिन पै पहें भगत न होई, शब्द रथें सदा सुख होई। ऐसा ख्यान पदार्थ नाम, गुरमुख पाव सरस समान रहाओ। ज्ञानो ज्ञान कथे सम कोई, कथ कथ बात औखने दुख होई। कथ कहंदन है ते रहे न कोई, बिन रस राथे मुक्त न होई। ज्ञान ध्यान सब गुरथे होई, साची रह तो साछा मन सोई। मनमुख कथनी है पर रहत न होई, नाम भुले थाउ न कोई। मन माया अंधो सर जा लाओ,

पाए सो बुझे जो स्वभाव बजाए। तीसमा वे चौथे बासा परम नाम काम ताके दासा पंजे पंज भूत फिर अल्लाह आप गोचर पुरख नरला एक परमो भो भोया से एक रस चाक सब तिरता से एक रंगरा ते एक मर दूर एक दर कर सचे देख दू झूठे को नाई पतनाओ कम न सुचा काला गाओ पिंजर पंखी बंदिया कोए छेरी पर में मुक्त ना होए तो छूटे जा खत्म चढ़ाए गुरन मेले पाव तोड़ाए खत्म खट दर्शन प्रभ साजे अनहद सब नरा लाभा जे जो प्रावे त मैल जो प्रभावे त मैल लावे सब दे भेदे तो पत पावे कर कर वेर कपे जल जावे साचे साचे साच समावे सब तमें सब संतोष शरीर सत समुद भरे निर्मल रीत भजन शिव सारी दे विचार के शब्द पावे सब पार मन साचा मुख सच पाए सचन ने ठाक न पाए अठवी अठ सिद्ध बुद्ध साधे सचन केवल कर मुरादे पौन पानी अग्नि बसराओ तय निरंजन सचो नाओ तिसने मनुआरिया लिबलाए परम नानक काल न खाए नौ नौमी नव नाथ नव खंडा कट कट नाथ महाबलमंडा ई पूता जुग सारा प्रभु देशवाद रखवार आदि गादि है भी योग परंपर करने जोग दसवीं नाम दान स्नान नंदन भजन सचा गुण ज्ञान सच मेल न लगे परम भो पागे बिन मैं टूटे काचे तागे जो तग जगे वै जानो अथर ची सच रंग माणो एकादशी एक हृदय बसावे हिंसा ममता मोह चुकावे पल पावे बारत साधु आए कूड़े लाल चलटे लपटाए छूटे गुरम सच माए द्वाद समुद्रा मन न खय रहे अंत अतीत पाए मारी बहराई परम नानक तैल बलाई दसवीं दुआ जो दान प्रभ कर जाने बाहर जा तो भीतरा ने बरती बत रे न काम अज बाजा जपे मुख नाम तीन पवन मैं एको जाने सब सच संयम साच विछाने ते तिर बसवंध किनारे अमृत मोसक लिवतारे डर मरे न बूढ़े कोय निडर भूड़ मरे पत खोए डर मैं कर कर मैं डर जाने तत्मा सच मन पाने चौदह चौदह था लै पावे राजस्ताम सदका समावे शशि के कर सुर समावे जो जोत की कीमत पावे चौदह स्वर्ण बता समाए खंड ब्रह्मंड रियल बलाए मब चंद गुप्त गहनार बुज गहनी शब्द विचार सुस जोत जोत तै लोई कर कर वे के करता सोई गोरते दिसे सो तिसी माए मन भूले आवे जाए कर दर थाप थिर थां सो आवे आप चने जा सतगुरु पावे जे आसा ते बिन सुनासा फूटे खपरो दुबदा मनसा ममता जाल तेरे उदासा परम नानक ममता के दासा बिलावलो महला तीजा वार सतकर दसमा इको ओंकार सतगुर प्रसाद आद बार आद पुरख वसोई अपे वर्त्य अवन कोई ओ तो जौरिय पुरोई अपे करता करे सोई नाम रिते सदा सोई गुरमुख विला बूझे कोई हृदय जपनी जपो गुणता सार अगम गोचर परम पर स्वामी जन पग लग त्याव हो दासन दास राहो सोमबा सचरिया समाए तिसकी कीमत कहीं ना जाए आखा खरे सब लिवलाए जिस दे बेत पल्ले पाए गमोच लिखिया ना जाए गुर के शब्द वारिया समाए मंगल माया मोह पाया अपे सिर तिरतन दे लाया आप जाए सोई बूझे गुर के शब्द दार कर सूझे तीन भागत करे लो लाए में ममता सब जलाए बुद्ध बार वापे बुद्ध सार गुरमुखानी शब्द विचार नावर ते मन निर्मल होए हर गुण गावे हो में मल खोए दस सचे ससु वापाए नाम ते गुर सब सुहाए लाह नाम पाए गुरुद्वार वापे देवे देवन हार जो देवे

बात ने नेत्र पत पूजा बिन मुझे सपाऊ है दूजा छिनचर वार संसार विचारों में मेरा ऊपर में संसार मान खोंदा मान मुखोंदा दूजे पाए जम दरबादा चोटा खाए गुर प्रसाद सदा सुख पाए सच कने सच लिव लाए सतगो सेवे से बड़भागी हमें मार सच लिव लगी तेरे रंगर ते सहज सुभाए तू सुदाता ले मलाए एक ते दूजा नहीं कोए गुर मुझे सोजी होए पंद्रह तिथि ते सदवार मारुति आवे बार बार निसरण ते वे संसार आवा गुण किया करता और नच सच रिया कलतार नानको गुरमुख बुझे को शब्द विचार बुलावल महला तीजा आदपुर को वापे सिट साजे जी जंत माया मोह पाजे दूजे पाए परम लागे आवे आए मरिया भागे सतगुर पेटे सो जी पाए परपंच चूके सास माए जाके मत लिखिया लेख ताके मन वस्या प्रवे कराओ सिट वोए आपे सब एखे कोई न मिटे तेरे लिखे श्री साधक जे को कहे कहाए पर मैं भुलाया वे जाए सगो से सो जन बूझा बुझाए गुर के शब्द सत गुर दूजे जे एको बात अब न बिया दूजे ते एक ना जिसका साहेब डाडा होए चुसनु मान सके कोए साहेब की सेवर सुनाई आपे बख्शे दे बड़ियाई इसते ऊपर नाई कोई कौन डरे डर किसका है गुरम साम से शरीर हो सब चिन्ह फिर लगे ना पीर आवे न जाए ना दुख पाए ना मैं राते सह समाए नान गुरम विखे हदूर मेरा प्रभु सदर प्रभुर एक सेवक परम पलाए आपे करे हर वाप कराए को वर्ते अब न कोई मान रोस की जय जय दूजा होए सागो सेवे करनी सारी दा साचे साचे विचारी थिति वा सब ससु आए सतगो सेवे ता फल पाए थिति वार सब आवे जाए गुर का सामने चलो सदा सच समाए थिति वार ता जाऊ सचु रते बिना में सफर में काचे मान मुख मर मर विगती जा एक नचेत दूजे लोभाए अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द को पाए पार अप पाए पाप मार अपे कीर्तन गुर विचार बहुते पे करे पेखदारी पावर पावे कच्ची सारी अथे सुख ना आगे होए मन मुख मोए अपना जन्म खोए सतगुर सेवे परम चुकाए कर अंदर सच मैल पाए आपे पूरा करे सोए थिति वार दूजा दोए सतगुर बाजो अंध गबार थिति वार सेवे मुद गबार नानु गुरु बूजे सो जी पाए एक तनाम सदार्या समाए बिलावल महला पहला चंत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुनल बेड़िया गोली आई राम मटकी तौरई आलि बलाई राम लाई हर सो रही गोली स शब्द शिकारिया कर जोड़ गोर पै कर बनती मिलो सच बिहारिया तन पाए पगती दे प्रीतम काम करो निवारिया नानक नवेल सुंदर देख पिर साधारिया सच नवेलिए जोगन वाली राम आओ न जाओ कई अपने सनाली राम नए अपने संगदासी मैं भगत वर की भावे अगाध बोधा कत कदिये सहज प्रभ गुण गावे राम नाम रसारसिया रावे सच बिहारिया गो शब्द दिया दान किया नानका बिचारिया श्री धर्म हड़िया प्रसंग सुती राम गुर के पाए चलो सत्संगूती राम तन सास मोती हार संग सुती संग सखी सहेलिया एक पाए एक मन ना वस्या सतगुरु हम मेलिया दिन रहन कड़ी ना चसा विसर

राम अलक पार पार सचाओ अपमान मलाइए ममता दू जलो सब मैल चुकाइए दर जाए दर्शन करी पाने तार तारण हरिया हार नाम अमर चाहते नानका उर धारिया।

हृदय से सदा रस अमृत भक्त परे पंडारा बैन मत नानक बलिहार वन्या पावरम प्राण धारा सुन सके।

राजमन पागी है पगज हरी पाए मो आनंद कथु न तवै मृमिल संग साजन अमर पदवी पावै बेसमान बेसम पय पे गुण बनासी राम कर गए पूजा गई कट जमकी फांसी राम गए पूजा लिनी दास किनी अंकुर लोचनाया मन बुविकार नटे दिन सुनिर्मल वाया जेत तारी मन प्यारी मां दुर्मत नासी विनमत नानक पई निर्मल ब्रह्म ले अवनासी सूर्य किरण मले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रिली संपूर्ण थिया राम ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए को एक बखानी आत्म सारा कन्हारा प्रभ नानी जानी आप कर्तव्य भौत आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन हर रस पिया उबलावल महला पन्मा चंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी बस आओ सखी अस पिर का मंगल गावै तजमान सखी मत अपने प्रीतम पावै तजमान बोबका दूजाओ सेवक नरंजन चरण कालक चरण सन दयाल प्रीतम सर दुर्त विखंडनों

रख मोह मछली तम नीर तेज बिन्ना क्यों सर है मोह चातुर तम बूंद तिरताओ मुख पर है मुख पर हरे प्यास मेरे जी ही प्राण बते लाडले लाड लड़ाए सब मैं हो हमारी होए गते चित वो मिटन दारे जुआ चक बिन दिन चराय नान प्या पे प्रसंग मेरे मछली नीर ना विसरय तन तन मारे भाग कराया फिर मेरा सोए बंक द्वार सगला बन हरा हर हरा स्वामी सुख गामी अंध मंगल रचना नाव नातुल नाय वाला कमल रसना गुण पना मेरी सेज सोई देख मोई सगल सासा दुख राव नान प्या पे मेरी आस पूरी मिले स्वामी परंपरा ब्लावलो महला पंजमा चंत मंगल इक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक सुंदर सात दयाल प्रभ सर्व सुखा नद पियो सुसागर प्रभेटिया नानक सुखी होते जियो चंत सुख सागर प्रपाइये जब हुए पागो राम मान मानो ये हर चनी लागो राम छोड़ से अनम चात्री दौर मत बुद्ध त्यागो राम नानक बहु सरदाई राम की तर हो सु गो राम सो प्रभ कत ताज कत लगे जिस बिन मर जाइए राम लाज नावे ज्ञान बती दर्श दो जनो बरमाइये राम पापा बन प्रभ त्याग करे वो कत ठहराइये राम नानक पाव तपो दयाल की जीवन पद पाइये राम श्री गोपाल चुराय दरबल गई दो चारण रसना राम प्राव भावत चलन सेवी काया काक ग्रसना राम परम दुख न जाने कोट जोनी बचना राम नानक बिन वावर जे चाना विस्ता किरम पसना राम लाए भैरो भगवंत संगे हो मिल रागन राम चंदन ची सुगंध रसाह में बिक त्यागन राम ईत उतना डोली अर सेवा जागन राम नानक जन प्रपाय अपना सा अटल सुहागण राम लाभ महला पंजवा हर खोजो बटपाग्यो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सधु गाये पावरम के रंगे राम सुव्रत आदि सेविये पाइये फल मंगे राम नानक प्रभ शरणागति जान सतरंगे राम तिल प्रभु न विछड़े जन सब कुछ

राम गुण गावत गोविंद गए सविच बजामी राम नानक उदरे जपरे सब का स्वामी राम रसमिने अपने राम संगे से लोन नी के राम प्रपिक दिच पुनिया में साधन जी के राम अमृत रस वर पाया।

लाई है आपे गुण गाया हरते आव भगतो दंसरा तां तले चढ़ाया जिनसी वह तिन सो पाया हरना समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बलाव न होई मनुख थाए न पाए पाखंड भगत न होई पा ब्रह्म को ना पाया जाए मन अट कर्म कमावने थाए न कोई पाए नान गुरु बिचारी बिचू आप गवाए आपे आप पा ब्रह्म है पा ब्रह्म स्या मनवाए जमन मन ना कटिया ज्योति ज्योत मलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक सोल बुलाए जन्म दुखटिए सचे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जो चले सतगुरु पाए सत्संग वह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोने जे गुरमुख मेल मलाए पौड़ी सबना रागा बिच हार वाप है सो भगत का मित हर सब कोई हर के बस भगत के आनंद कर हर भगता का मिली सर्व सो नसल जन टंग तारू हर सबना का खसमय सुपात जन चित कर तुझ अपड़ कोई न सके सब चाक चा पवे चढ़ श्लोक महला तीजा।

विचार हर नाम पाया बिरसा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसन हर भगत सचो बख्शियन सो सचा साओ तिसकी माता जी लोकड़ दा होर दाटना व्यात न सहो पहु जन्ना को सनमुख होए सुवरास ले वे मुखो भसवा हो हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जाऊंगा तीतन नेड़ न जाओ जिन्हान कर नाम तान लद्याओ सदा बेपरवाह श्लोक में लाती जाओ जग में भगती हर तन खटिया हो सब जात भर बुलाया गुरु प्रसाद नाम मन वसया उदरे तांजने दी माया सदा सहज सुख मन वसया सचे सोल बुलाया ब्रह्म विष्णु महादेव त्रै गुण भूले हमें मुंह बधाया पंडित पाडवर मुनि भूले दूजे पाए चित लाया जोगी जंग सिंहसी भूले बिन गुर तत् न पाया मन दुखे सदा परम भूले तिन बिरथा जन्म गवाया नानक ना वरते सी जन समदे जे आपे बस मिलाया महला तीजा नानक सो सलाई है जिस बस सब कुछ होए तिसे सिरे बहु प्राणियों तिसुन अभन कोए गुरमुखंतर मन सहे सदा सदा सुख होए पौड़ी जिन्नी गर मुख वर नाम ताना खट्यो छे दिवालिये जुग माए यो मंग दे फरे सब जात में कोई थुक न तिन को पाए पर खिले करे अपनी प्रतीत सगा भी आप लखाए जितन कारण चुगली करे सो तन चुगली हथ आवे ओ पावे तिथे जाए गुरमु सेवक पाए हर तन मिलाए तिथो कर्म हे ना सकाए हो तद संतरवा तन नाए श्लोक महला तीजा गौरमुख संसा मूल न हुई चिंता विचों जाए जो करे सो सहज वै कणा किछ न जाए नानक तिन आख्या सुने जे नाइन पन्ने पाए महला तीजा काल मन मनसा मन समाणी अंतर निर्मल नाओ अंदन जागे कदे न सोवे सज अमृत प्याओ मिठा बोले अमृत वाणी अंदन हर गुण गाओ नीक रवासा सदा सुने नानक तिन मिलिया सुख पाओ पौड़ी तन हर तन तंजवेरी गुर सुगर तन वर पाया जे किसे को दिसवावे कोई मंग लय अके कोई को दिवाले तन तन जोर किते किस नाल न जाय वंडाया जिसनु सतगुरु नाल वर सरदा लाए तिस वतन की वंड हथवावे जिसनु करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नहीं किसे का खत नहीं किस के शिव मन रोले नाई जे को हर तन की विखिल करे तिस काम हर चौ कुंडा बिच काला कराया हर के दिते नाल किसे जोर विखिली ना चली द्यो द्यो नित चढ़े सवाया उस लोक महला ती जाओ जागत जलंधर रख ले अपनी कृपा तार जित

चोरी न कपट सेवा की जय हर केरी। ता मेरे मन सर्व सुख पई है, जिस सेवा सब किछ सो सब वड्डा, सो मेरे मन सदा धियाई है। जन नानक सो प्र हर नाल है तेरे, हर सदा धियाए तू तुद लय छड़िए। गोड महला चौथा, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृप्त, जो त्रिका मंत मन नीर

कौर संग गौर संग त्यान रहो नाम मारे जी की रासो नाम संगी जात कर जात नाम मल्ला का मीठा अंजल तो समय नाम डीटा नाम दर्ग मुख उजले नाम सगल कुल धरे नाम मारे कार सीध नाम संगे मनवा गीध नाम ही माम निर्भव पे नाम आवन जावन रहे गुरपुरे मेले गुणदास को ना सुजनवास कोट महला पंजवा

नमस्कार। ऐसे ब्राह्मण माते आए कटाकुट कदे सहाय रहाओ राव को रंग कराओ जाके एक समान की ढाद पुसगल पुराण।

सब काटो आधार, नाम रंग भगतन भय लालू, जस करते संत न्यालू, नाम रंग जन रह गाए, नानक दिन लगे पाए गोड महला पंजवा। जाके संग निर्मन निर्मलो, जाके संग हर सिमरन, जाके संग कलम खो नासु, जाके संग हृदय प्रगास। से संतन वर के मेरे मीत, केवल नाम गाये जाके नीत राहो, जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम भव नसे। जाके कीर्तन निर्मल सार, जाके ऋण बच्चे संसार, कोट पता जाके संग उदार, एक निरंकार जाके नाम उदार।

सहनंद हर नाय गोड़ महला पंचमा गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर के समंत्र मन मान गुर के चन हृदय तारो गुर पावन सदा नमस्कारो मत को परम भूला संसार बिन गुर बिन कोई न तुरस पार रहो।

दात। गुर परमेश्वर एको जान, जुत पाव सो प्रवान, राहो गुर चरणी चा का मन लागे, दूर दा प्रमता का पागे। गुर की सेवा पाए मान, गुरु पर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेव की पूर्ण काल। गुर के सेवको पहो दुख न व्यापे, गुर सेव दया दे जापे, गुर की महिमा कथना न जाए, पावरम गुरिया समाए। कौ नानक जग पूरे पाग, गुर चरणी ताका मन लाग, गौड़ महला पनवा। गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पावरम गुर भगवंत, गुर मेरा देवल को पियो, गुर सर्वू चरण गुर सियो। गुर ब्रह्मनाय मैं थाओ, वंदन जप गुरु गुर नाओ राओ, गुर मर ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान। गुर की सन को कर जोर, गुरु बिना मैं नाई होर, गुरु तारे पवार, गुर सेवा जमते छुटकार। अंधकार में गुर मंत्र जारा, गुर के संग सब निस्तारा, गुर पूरा पाई अपना भागी, गुर की सेवा दुख न लागी। गुर का शब्द न मेटे कोए, गुरु नानक नानक वारसोए, गौड़ महला पंजवा। राम राम शंकर विहार, राम राम राम प्राण उदार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सवरे उमाए। संत नाम बोलो राम, सबते नरम पूर्ण काम राओ, राम राम तन संच मंडारो, राम राम राम कर आहार। राम राम विसर नहीं जाए, कर बिरा गुरु दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिवलाए। राम राम जन नरोल भय, जन्म जन्म के किल गए, रमत राम जन्म नारे, उचर राम भय पार उतारे। सब देव उच राम परगास, निस्वास जब नानक दास, गौड़ महला पंजवा। उन्हो कसम की नी ठक हारे, दास संके मार वधारे, गोविंद भगत का मैल न पाया, राम जना मिल मंगल गाया। सग सेठ के पांच सिखदार, राम भगत के पानी हर रहो, जागत पास ते दिते दान, गोविंद को कर सलाम। टूटले सग बतकु वह सजना, पग मल मल तू वह, पांच भूत जाने कमाए, तुझ खेल का जगत वे आए। तीन गुना के

है माया, मां माया ताकि जा अचल चेत भेद दयालु, दीन दयाल सदा कृपालु, ताकि आत्म कहीं न जाए, नानक ताके बल बल जाए। गौड़ महिला पंचमाओ, संतन के बलिहारे जाओ, संतन के संग्राम गुण गाओ, संत प्रताप किल्प को सब गाये, संसरण बड़भागी पाए। राम जल के बिगड़ न व्यापे, गो प्रसाद अपना प्रभ जापे, रहो पाप ब्रह्म जब हो दयालु, साधु जन की करे रवाल, काम क्रोध सुतंते जाए, राम रत्न से मनवाए। सबल जन

सा मुरापति आए दुष्टंकारी महाविचानंद के मुखिन रोग हो जा जा कर सब लोग संदन के मन महानंद संजय को दे भगवंत संगत के मगो जल पे सकल था निंद के गए सा जन सास लाए पावरम गुरु वे प्रवाए सकल पे मिटे राजा की सर नंद कुमार पाए सब शरण।

बोले चकमारी बोल बोल रो बड़े बेकारा बिन बोले क्या करे बेचारा को कभी छू साकट बोल है पर्या हो सो कबू ना डोल है गोड़। नर मरे नर काम नो आए पशु मरे दस का सवारे अपने कर्म की गत मैं क्या जानो रे मैं क्या जानो बाबा रे राव। हार जले जैसे लकड़ी का तूला के जय जय कास का पूला के कबीर तो वही नर जागे जमकर डंड मुंड में लागे गोड़। आकाश गगन पताल गगन चौंध गगन हाई ले सदा प्रकोप घटन से गगन जाए ना जाए ले मोह राग पे ओए जीव आए कहाँ गए हो राव। पंच तत् मिलकाया किनी तत् कहाँ जे किन रे कर्म बद तुम जो का तू कर्म किन जो दिन रे हर मैं तन तन मैं हर सन अंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छुडो सहज हुए सो हेरे रा गोड़ बाणी कबीर जियो की कर दू जाय का सतगुर प्रसाद। पूजा मांस भला कर गाडे डारे हो अति को मुंड मैं मारे हो अत बाग जी सा मारे या मूर्त गए हो बलिहारे है मेरे ठाकुर।

वाह कह रहे वसे भगवान, क्या बुरा संत है कि नाम बाद कोट कुंचर को जी नाम कुंचर बोले ला नमस्कार हे बूजी नहीं काजी संगारे तीन बार बतिया परली नाम मन कटोर अजू नपती नाम कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद।

चंदन को उपाय रावना गिरी न दसी न सुराज पिक वशीस पंडित रक्त राई दाय ब्राह्मण राखती ए नाय तब कहाभिषेक नाय जी न मत देख इस मत को जे को रूप है जो रूप है सोई पतकु है गुरपुरसा मंडक रूप पाया जिन मातु मिट पाया कौ कबीर हे राम किया सो जसता गे पर मिटे न मन सो ओढ़ टूटे जाए निकुटी पान द्वा चुंका वे कान कु बेचारे भूले पान ए मुड़िया थिर कार मुड़िया सुगलो द्रव खोई आव तिजात नाक सर होई राओ तोरी नार की चुंडी बाता राम नाम वाका मन राता लड़की लटकन के बोना आए मुड़िया अंधनता पे जाए एक दो मंदिर एक दो भात हमको सागर उनको खाट मुड़ बोलो सी कमर की पोती हमको चावल उनको रोटी मुड़िया मुड़िया होई ये मुड़िया की बूढ़त की टेक सुन ली लोई वे पीर मुड़िया बोल सन कबीर गौण कसमर तो नार नरो वे सुरगवारा और रखवारे कोई मुनास वागे नरकिया भोग बिलास एक सुहागन जगत बिहारी सगले जी जंत की नारी रा सुहागन गल सुहे हार संत को वेख विकसे संसार काशगार कर पखियारी संत की छिटकी फिरे विचारी संत पागो पाचे परे को प्रसादी मारो रह रे सगदी ओ पिंड भरण हमको दिता रे तखड़ायण हम तिसका भाव जान्या पियो जावे करवार मिले गुरदियो कह के रबुआ बाहे परी संसार के अंचल हरी गोड़ ग्रह सुवा।

तवसीत डोले चीत राव स्वागन कृप की पुती सेवक ता जागत सूती साधु के ताडी दरबार सन तेरी मोको निस्तार स्वगन सुंदरी पगन शन किशन हरी जो लग प्राण तो तल संगे ता नाय तले बेट नंगे स्वगन पवन त्रैली आओ दसठ प्राण तीर्थ रस की आओ ब्रह्मा मिसमेश वेद बड़े पूरा जे के छेदे स्वगन वाल न पार पंच नाथ संग विद्वार पांच नाथ के मिटवे फूट है को कबीर गुर कृपा छूटे को जैसे मंदिर में बल हर न ठार है नाम ना किस पार उतर है कुंभ बिना जल न टिकावे सद बिना कैसी अवगत जावे राहो जारो तिथे तो राम न चिते तन मन रम तो रहे रहो जैसे जार हर बिन जीव जी में नहीं बोई है सूत बिना जय मणिपुर होई है कुंडी बिना क्या कंठ चढ़ाई है सद बिना के अवगत जाई है जैसे माँ पिता बिन बाल ना होई बिंब बिना कह कपड़े धोई तो कोर बिना कैसे सवार साधु बिन ना ही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसमा जोहरी कह कबीर के कर करना गुरमोह सुभाव निमलना गौड़ कूटना सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कूट कुनवा के सट्टी लाए सूट मुक्त बपाए कूटने को संसार सगल ब्रोहन के माए विचार आओ नाचन सोए सम्मान से नाचे है चूट नव दी जाए बचे साचे है इस मन वगे पूरे ता नाचने के मन रखवाल बाजारी बजारे सोदे पंच बुरी दे को प्रबोधे नौ नायक भक्त बिछाने जो बजारी हम गुरु जमाने तास कर सोए जता तनाव कर इंद्र के जतन नाम चराए कह कबीरों से लखन तन देव आत रूप चंगन गौर तन गोपाल तन गुरदेव तन नाथ भूखे अटल टह केवल

बरनारी कोडा लाहिर जवारी जय जय देखो तय तय रामा के चन त्या में नमा गोड़ मुको तार ले रमा तार ले मैं जना जन्म तरबो न जानो बाप बिठला बाधी राहो नाते सर हो जा।

करत नहीं ढुक जमय रहो। हरणा चोर प्राण जमल की अवघंटे खान सु अपड़ा दुगन का तरी सो हरण नो की पुतरी और करतभूत ना तरी बाल का तनी कपटे परी।

राम सीता रह गौड़ वाणी रविदास जियो की कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद मोक।

मुख दिए। मन जीवन को तरती दिन गुण विसरे से साधु हर जोगी जंगम पीर पशु हते रहे जितन मिला करते अखाऊ ता मन सेव करे। कागलू न रहे कर संगे पानी कमल रे ऐसी भगत मिले जो नानक तिन्नो मां क्या करे राम कली महला पहला। शनिदान नानक बोले बात कर पंज करे डिंडोले ऐसी जोत जोग कौ पाले आप तरे सगले कुल तारे। सुवा धोती ऐसी मत पावे अनसम समा समावे भिख्या पाए भगत पै चल हो त्रता परत तो संतो कमुल ध्यान रूप वासन पावे सच नाम ताड़ी चित लावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन विशदा उदू नसानी आसा मैं नरा सुन लाए न चुना न करते पाए प्रणु अगब सुनाए गुर चेली गई संत मलाए। दिखिया दारू दिखिया दारू भोजन दिखिया दारू भोजन लाए दिखिया दारू भोजन लाए तो दर्शन की सोजी पाए। मन मन मैं तारा ग्रंक समाज वालन हारा मन असा साधे जन कोई अचे सो निर्मल होए। गौरमुखी मन लिया सवार तस्विच तस्विच राम की मल्ला पहला डोल तपा बेड़ी पाव परी पवन ले जुग जाई। मन मुख से सेठन को आए ने चौदे बढ़ियाए गुर तार तारना रिहा दे भगत पूरा बनासी हो तुझको बले हारिया रहो। सिसागद जोगी अजम एक सिद्ध कर जा जिनी त्याया प्रत पैसित स्वामी अखर जिनको आया जब तो सुनु कर्म जाना ना जपी प्रभ तेरा। गुर प्रसाद परमेश्वर नान बेटे सचे सबदन वीरा राम कली महला पहला। सोती सोतर लाइए तू तन कर तुला लंगे जे तू अंतर पाए नंत से तू राखुआ न दीवा वाले का तो ऐसा दीवा नीर चलाए जित दीवे सब सूजी पाए राव। हची मिट्टी सूजी हुए ताका किया माने सोए करनी ते कर चाको टाल हुए अथे ते निभी नाल हुए आपे नज करे जाओ सोए गुरम बेला बुझे कोए। ताटकर दीवा नैचल होए पानी मरे ना बुझाया जाए सा दीवा नीर चलाए बोले डोले बाऊ ना बड़ा होए जापे यो संगा सुन लोए। खरती भवन सूत के बैसु नित भय गुणी सुवंसु ऐसा दीवा वाले कोए नान सो परंग तोए राम की महला पहला।

के मरे मेरी माया, तान तान बटभाग गुर सनी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अपना कोई सूझे बूझे हाँ मन जब जब उज पाया, नाम हीन फिरे ते नकटे तन कास गास नाक बढ़ाया, मुको जग जींजवाल स्वामी रंतर नाम साया, नान गुरु गुरु है पूरा, मैं सतगुर नाम त्या राम प्री महला पन्मा, सतगुर दाता बड़ा बड़ पुरख जित मिलिया उरधारे, जी दान गुर पूरे दिया अमृत नाम सुमारी, राम गुर हर हर नाम कंठ धारे, गौरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन बटपाग मारे राहो, कोट कोट तीर्थ आवे जा कंत न पावे पारे, हृदय काम कामनी मांगे रिद मांगे हाथ बसारे, हार जा जापो जापो बड़ा बडेरा, गौरमुख राखो उधारे, जे बटपाग हुए ता जे पियर पाओ जल पार उतारे, हार जा ने

के तू राया, तू कृपा ते सुख पायो रहो, तू सागर हम तुम्हारे, तुम मेहमान कलाला, तुम देवो तिल शंका मानो, हम बूचो सदा निहला, हम बार तू पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेले सब लाडलावे, तुम साधु गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर संपूर्ण भी संग गए, मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहना जाए, राम कली महला पंजवा, कर कर ताल बगावे बनैनो माथे बजर बाबा, कण मंद बसरी बाजे जे वातन वागा जा, नित करे कर्म नुआ नाचे आने कुंगर साजा, राम को नेरत कारी पेके पेकन हार दियाला, जीता साव सिवारी राव, अकार मंडली तन सवाई ऊपर गगन चंदवा, पवन मचोला करते गेला जल तेओ पतो आओ, पंत तत के पुत्रा की ना कृत मलावा हुआ, चांद सूज दो जर चरा चौकट पीतर रखे, दस पातो पंच संगीता एक पीतर साते, पहन पहन होए पाव दिखावे सो नरारी पाखे, कर कर नृत्य हुए धन राती, खट खट बाजे तूरा।

निर्मल रहो। एक की करे आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर, गुर कै चरण नमस्कार, पव जल उतरे पार, देवन हार दतार, अंत न पारावार, जाके कर सर्ब निदान, राखन हार निदान, नानक पाया इव निदान। हरे हरे हर निर्मल नाम, जो जपे तिसकी गत हुई, नानक कर्म प्राप्त हुई, राम कली महल्ला पंजवा, दुर्लभ दे सवार, जाए न दरगे हार, हलत पलत तो दे हुई वडियाई, अंत की बेला लय छाई, राम के गुण गाओ, हलत पलत है दोवे सुहेले, चरज पुरख त्याओ राओ, उठत बैठत हर जाप, बिनसे सगल संताप, बैरी सब होवे मीत, निर्मल तेरा होवे चीत, सब ते उत्तम एहो कर्म, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर सिमरन तेरा होए उदार, जन्म जन्म का उतरे पार, पूरन तेरी होवे आस, जमकी कटिए तेरी पास, गुर का उपदेश नीजे, नानक सुख सह समीजे, राम कली महल्ला पंजवा, जिसकी तिसकी कर कर मान, अपन लाए गुमान, जिसका तू तिसका सब होए, तिसे अराध सदा सुख होए, काहे परम परमे बिगान, नाम बिना कछ काम ना आवे, मेरा मेरा कर बहुत पछताने राव, जो जो करे सोई मान ले, बिन माने रल होवे खे, तिसका पाना लागे मीठा, गुर प्रसाद विरले मन बूठा, विपरवाया गोचरे आप, आठ पैर माता को जाप, जिस चित आए बिनसे दुखा, हलत पलत रहु जल मुखा, कौन कौन उदरे गुण गाए, गुणन न जाई कीम न पाए, बूढ़त जा भगवंत, गुर पूरे दिनो मंत, मिटे सगल ते त्रास, पूरन होई आस, सफल सेवा गुरुदेवा, कीमत किशु कह न जाई, सचे सच अलख पीवा राओ, कर्ण करावन आप, तिसको सदा मन जाप, तिसकी सेवा करनीत, सच सहज सुख पावे मीत, साहेब मेरा अत पारा, खिन मैं था प्यो थापन हारा, तिस बिन अवर न कोई, जनका राखा सोई, कर कृपा अरदास नीजै, अपने सेवको दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊ जांका प्रताप, राम कली महल्ला पंजवा, बिरथा परवासा लोग, ठाकर प्रभ तेरी टेक, अवर छुट्टी सब आस, अचिंत ठाकर पेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्ज तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे राओ, तुमे कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर उई त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिसी की ओट संदीव, जाके कीने हैं जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्ब की रेन हवीजे, आप मिटाए मलीजे, आंदन त्याये नाम, सफल नानक यो काम, राम कली महल्ला पंजवा, कारण करन करीम, सर्ब प्रितपाल रहीम, अल्लाह लख अपार, खुद खदाए वड बेसमार, ओ नमो भगवंत गुसाई, खालक रवरिया सर्ब ठाई राओ, जगन्नाथ जग जीवन माधो, पव पंजंडित मैं अरादो, रिखी केश गोपाल गोविंद, पूरन सर्बत्र मुकंद, मेहरवान मौला तुही एक, पीर पकंबर सेख, तिलां का मालक करे हाक, करान कतीब तो पाक, नारायण नर हर दयाल, रमत राम कट कट आधार, बास दे बस्त सब नाए, लीला किछ लखी न जाए, मेर दया कर करने हार, भगत बंदगी दे सिरजनहार, कौ नानक गुर खोए परम, एहो अलो पार ब्रह्म, राम कली महल्ला पंजवा, कोट जन्म कै बिनसे पाप, हर हर जपत नाई संताप, गुर कै चरण कमल मन वसे, महाबिकार तां ते सब नसे, गोपाल को जस गौ प्राणी, अकथ कथा साची प्रपूरन, ज्योति ज्योत समानी राओ, तृष्णा भूख सब नासी, संत प्रसाद जपया बिनासी, रैन दिन सभ शिव कामानी, हर मिलने की नसानी, मिटे जंजाल होए प्रभ कृपा दयाल, गुर का दर्शन देख नियाल, परा पूर्बला कर्म बने आया, हर के गुणित रसना गाया, हर कै संत सदा परवान, संत जना मस्तक निशान, दास की रेन पाए जे कोई, नानक तिसकी परम गत होए, राम कली महल्ला पंजवा, दर्शन को जाइए कुरबान, चरण कमल हृदय धर ध्यान।

संतो हर नाम ला दास को दियो सगली त्रिष्णियो लाई संतो राओ खोजत खोजत लाल एक पायार कीमत कह न जाई संतो चरण कमल स्यों लागो त्याना साचे दस समाई संतो गुण गावत गावत पै निहाला सिमर तृप्त्या गाई संतो आत्म काव्या सभी अंतर कत्यावे कत जाई संतो आद जगादी है पियो सी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नी पाइये पूर्या सब ठाई संतो मीत साजन माल जो बन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच कर्म राम नाम दिता चतारी घूमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार।

जो प्रत्याये सब कुछ पाइये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरमुख मिल निर्गुणिये कौ नानक कर प्रभ मेरे कह नित नित मंगल सुनिए। राम कली महला पंजवां हर हर ध्याय मना खेना विसारिये राम रामा राम रमा कंठ उर धारिये उर तार हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसो दुख पव खंडनो जगदीश इस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरहन चितारिये चरण कमलिया धार जन का आसरा माल मिलख भंडार नाम आनंद तरा नाम नर निदान जिनके रस भोग एक नारायण नाम रस रूप रंग अनंत बीठल सा सा ध्याना किलविक हरना नाम पुण्य चरना नाम जमकी त्रास हरा बिनवंत नानक रस जन की चरण कमल आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जाने देख चलत दयाल सुन भगत वखानी जी जंत सब तुझ ते आवे पुरखोत्तम परमेसरा सर्ब जाचक एक दाता करना मैं जगदीसरा साधु संत सजान सोई जिसे प्रभ जी मानई बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पछानई मोहे निर्गुण नाथ सरनी आया बल बल बल गुरदेव जिन नाम दड़ाया गुर नाम दिया कुछल थिया सर्ब इच्छा पुनिया चलने बजाई शांति आई मिले चिरी विछुनिया आनंद हरख सहज साची महा मंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुर पूरे ते पाया। राम कली महला पंजवां रोन चुनो शब्द अनाद नित उठिए गाये संतन कै किलवे सब दुख बनासन हर नाम जपिए गुरमंतन कै हर नाम लीजे अम्यो पीजे रहन दिन से अराधिये जोग दान अनेक किरिया लग सागर त्याए स्वामी नर हरे सुख सागर गोबिंद सिमरन भगत गावे गुण तेरे राम नंद मंगल गुण चरनी लागे पाए सुख नेरे राम सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पोपागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रिये प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दमिद्र माधो अंत न पाइये गनिए राम दयाल दोखर सरन दाता सगल दुख निवारनो मोह सोग वकार बिखड़े जाप जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रहन थीमा बिनवंत नानक प्रभ आए कीजे आठ पैर अपना प्रभ सिमरे एक नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे पव जल रहे आमन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मिठा पाना सब इच्छ पुनी आस पूरी मिले सतगुर पूरे आ बिनवंत नानक प्रभ आप मिले फिर ना ही दुख विसूरिया। राम कली महला पंजवां शांत श्लोक चरण कमल शरनागति नंद मंगल गुण गाम नानक प्रभ आराधिए बिपत निवारण काम शंत प्रभिपत निवारनो तिस बिन अवर न कोई जियो सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो जल थल मैयल पूर रिया एक निमख मनो न विसरे गुर चरण लागे दिन सबागे सर्ब गुण जगदीसरे कर सेव सेवक दिन सरैनी तिस पावे सो होए जियो बल जाए नानक सुख दाते प्रकाश मंतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मंतन सुखी हर मंतन शांत पै संकट काटे नारायण दयाला जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रितपाल जियो प्रितपाल अचित पुरख एक तिसे एक सिंह रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अंदिन जागा जियो पिंड ग्रह थान तिसका
ਤਨ ਜੋਬਨ ਤਨ ਮਾ ਜੀਉ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ, ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾ ਜੀਉ। ਸਲੋਕ ਰਸਨਾ ਉਚਰੇ ਹਰ ਹਰੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਵਖਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖੇ ਨਿਧਾਨ ਸ਼ੰਤ, ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਕੋ, ਅੰਚਲ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗ ਜੀਉ, ਭਜ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦਿਆਲ ਦੇਵ ਮਨ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਜੀਉ, ਇੱਕ ਓਟ ਕੀਜੇ ਜੀਉ ਦੀਜੇ, ਆਸ ਏਕ ਧਰਨੀ ਤਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਭ ਤਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਕਾਰ ਛੂਟੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾਗ ਜੀਉ, ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ, ਥਿਰ ਜਾ ਕਾ ਸੁਹਾਗ ਜੀਉ। ਸਲੋਕ ਧਰਮ ਅਰਥਰ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਥ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਮਾਤ ਸ਼ੰਤ, ਸਗਲ ਇੱਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆਂ।

संग प्रीत में एक तिल रह ना जाए, मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सबाए। कर गया लीनी साजने जन्म जन्म कै मीत, चरने दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत। संत रुत बरस सहेलियां सावन भादवे नंद जियो, कन उन उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रपूर प्रिया सर बठाई हर नाम नाम निद ग्रह परे, सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रिय रंग जागे न चिदर लागे, कृपाल सद बकसंद जियो। बिनवंत नानकर कंत पाया, सदा मन पवंत जियो। श्लोक आस प्यासी मैं फिरूं कब भेखूं गोपाल, है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलन हार। बिन मिलवे शांत न उपजे, तिल पल रह न जाए, हर साधे सरनागती नानक आस पिचाए। संत रुत सरदे डंबरो असु कथके हर प्यास जियो, खोजंती दर्शन पिरथ कब मिलगे गुणतास जियो। बिन कंत प्यारे न सुख सारे, हर कंगन तिग बना सुंदर सजान चतर बेती, सास बिन जैसे तना ईत ऊत न सुख सारे। हर कंगन त्रिग बना ईत ऊत द दिस्य लोगन, मन मिलन की प्राप्या जियो। बिनवंत नानक तार कृपा, मेलो प्रभ गुणतास जियो। श्लोक जलन बुझी शीतल पे, मन तन उपजी शांत, नानक प्रभ पूर्ण मिले द्वितीया बिनसी प्रात। साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर, नानक परम पे मिट गए रमन राम परपूर। संत रुत सिसियर शीतलर प्रगटे मगर पोह जियो, जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रो जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेविया। हर डोर सिंगार सब रस गुण गाओ, अलख अपेविया। पाओ भगत गोविंद बाचत जम न साके जोए जियो। बिनवंत नानक प्रभ आप मेली, तै नाम प्रेम बिछो जियो। श्लोक आरतन पाया सुहागनी डोलत नाही चीत, सत संत योगी नानका ग्रह प्रगटे प्रमीत। नाद बनोद आनंद कोड प्रिय प्रीतम संग बने, मन बाचत पल पाया हर नानक नाम पने। संत मकर रुत मन भाम दी माघ फगन गुणवंत जियो, सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो। ग्रह लाल आए मंत्र आए शीज सुंदर सोईया, वन त्रिन त्रै पवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी अच्छ पुनी मन जपया निर्मल मंत जियो। बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक संत सहाई जी कै पवजल तारन हार, सब ते उचे जानी है नानक नाम प्यार। जिन जान्या से तरे से सूरे से बीर, नानक तिन बलिहार ने हर जप उतरे तीर। संत चरण विराजत सब ऊपर मिटिया सकल कले।

विसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुण श्री रंग स्वामी आदि को आदेश जियो बिनवंत नानक।

प्रसाद। ओंकार ब्रह्म उत्पत ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग पै ओंकार भेद निर्मय, ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे, ओनम अखर सुन विचार ओनम अखर त्रै पवन सार, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख को पाला राओ, सस्से सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै मानक मोती, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे अंत निरंतर साचा, गुरमुख देखे सास माले बिन साचे जग काचा, तदे धर्म तरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा, तदे धूल पड़े मस्तक कंचन पए मनूरा, तन तरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा, करते कीमत करता जाने कह जाने गुरसूरा, ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिखाया, गुरस गीत बात नहीं पावे सुनिए गैर गभीर गवाया, गुर सच के अमृत लिया मन तन सा सुखाया, आपे गुरमुखे आपे देवे आपे अमृत प्याया, एको एक कहे सब कोई होमे गर्भ व्यापे, अंतर बार एक पिछाने यो कर मैल संजापे, प्रभ नेड़े हर दूर न जानो एको दिष्ट सबाई, एक ओंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई, इस करते को क्यों ग्रह रखो अफरे उतलियो न जाई, माया के देवाने प्राणी झूठ ठगोरी पाई, लाभ लो मोहता जब गुत्ते इबता फिर पछताई, एक सरे वे तांगत मित पावे आवन जान रहाई, एक चार रंग एक रूप पवन पानी अग्नि असरूप, एको पवर पवे तहलोए एको बूझे सूझे पत होए, ज्ञान ध्यान लै समसर रहे गुरमुख एको विरला को लहे, जिसनों दे कृपा दे सुख पाए गुरद्वारे आखस नाए, उरम तूरम ज्योति उजाला तीन पवन मैं गुर गोपाला, उगव्या स्वरूप दिखावे कर किर अपने करे आवे, ऊनम बरसे नीजर तारा उत्तम शब्द सवार नहारा, इसे के का जाने पेयो आपे करता आपे देओ, उगवे सूर्य असर सिंगारे उच्चो देख शब्द बिचारे, ऊपर आद अंत तै लोए आपे करे कथे सुने सोए, ओ विदाता मन तन दे ओ विदाता मन मुख सोए, प्रभ जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पत होए, राजन राम रवे हितकार रन मैं लूजे मनुआ मार, रात दिन त्रय रंग राता तीन पवन जुग चारे जाता, जिन जाता सो तिस ही जिया अत निर्मल सी सच देहा, रसी राम हृदय कपाए अंतर शब्द साच लिवलाए, रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे, राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे, रहन कहन ते रहे न कोई किसको करो बिनंती, एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पतमती, लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली।

आपे बुझे आपे समझे आपे सूझे गुर का कया अंक समावे निर्मल सूचे साचो पावे गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साच अखोट गुर कया साकार कमावो गुर की करनी काहे तावो नानक गुरमत सास समावो टूटे न्यो न बोले सही टूटे बाव दो से कही टूट प्रीत गई बरबोल दुर्मत परर छाडी तोल टूटे गंठ न पे पड़े विचार गुर शब्दी कर कार्य सार लाहा साच न आवे तोटा त्रै पवन ठाकर प्रीतम मोटा ठाको मनुआ ठाको ठाए ठैक मुई अवगुण पछताए ठाकर एक सबाई नार बहुते वेश करे कुड़ियार पर कर जाती ठाकर हाई मैल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकर तारी डोलत डोलत है सखी फाटे चीर सिंगार डा पान तन सुख नहीं बेंडर बिंटी डार डरप मुई करे अपने टीटी कंत सुजान डर रखिया गुरे अपने निरपो नाम बखान डूगर वास्ती साकनी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर दै दया के सब कोई जय पावे तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा नवारे सोए टटोलत ढूंढत हो फिरी टै टै पवन करार।

तिनकी तूड़िया कुलिए संगतम मेल मिलाओ, मन दिया गुरे अपने पाया निर्मल नाओ। जे नाम दिया तिस देवसा तिस बलिहारे जाओ, सो उसारे सो ढाई सी तिस बिन अवर न कोए, गुर प्रसादी सिमला संभला।

दया दान दयाल तू कर कर देखण हार। दया करे प्रभ मेल लहै खिन मै ढायो सार। दाना तू बिना तू ही दाना कै सिरदान। दाल दपंजन दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान। धन गया बह झूरी धन मह चीत गवार।

रंग एक, मन दीजै सिरसों पिए पी करते की टेक। धंधा तावत रह गए मन मह शब्द आनंद, दुर्जन ते साजन भए भेटे गुरु गोबिंद। बन बन फिरती ढूंढती वस्त्र ही करबार, सतगुरु मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार। नाना करत ना छुटिया गुण गुण जम पुर जाहे, ना तिस इहो ना ओहो है आप गुण फिर पछुताहे। ना तिस ज्ञान ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान, बिड़नावे निर्भउ कहा क्या जानावे महान। थाक रही कब अपड़ा हाथ नहीं न पार, ना साजन से रंगले किस पै करी पुकार। नानक प्रिय प्रो जे करी मेले मिलनहार, जिन बिछोड़ी सो मिल सी गुरु के हेत अपार। पाप बुरा पापी क्यों प्यारा आया, पाप लदे पापे पसारा। पर हर पाप छाणे आप, ना ते सोग वियोग संताप। नरक पड़ंतो क्यों रहे क्यों वंचै जमकाल, क्यों आवण जाना विसरै झूठ बुरा कह काल। मन जंजाली वेड़िया भी जंजाल माहे, बिन नावे क्यों छुटिए पापे पचे हे पचाहे। फिर फाही फासै कौगा फिर पछताना, अब क्या हुआ फाता चोग चुगै। नहीं बुझे सतगुर मिले ता अखी सूझे, ज्यो मछली फाथी जम जाल। बिन गुरदाते मुक्ता पाल, फिर वावे फिर जाए। एक रंग रचे रहे लिवलाए, ए विछूटे फिर फास ना पाए। बीरा बीरा कर ही बीर पहे बराए, बीर चले कर अपने बहन बिरह जल जाए। बाप बोलो कै घर बेटड़ी, बाली बाले नेहे जे लुहड़े बर कामणी। सतगुरु से वहते बिरलो ज्ञानी बुझणो, सतगुर साच मिले ठाकुर हाथ बनाइया। जय भावै तैदे बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख खोए। ए बाणी महापुरख की निज कर वासा होए, भन भन कड़िए कड़कड़ भजै ढाहे। उसारे उसरे ढाहे सर पर सुख है, पी पर भुख है, समरथ बेपरवाह है। भरम भुलाने भये दवाने, बिन भागा क्या पाइए। गुरमुख ज्ञान डोरी पर पकड़ी, जिन खिंचै तेनो जाइए। हर गुण गाई सदा रंग राते, बहुड़ ना पछुताइए। भबै भल है गुरमुख बूझै, ता निज कर वासा पाइए। भबै भौजल मार्ग विखुड़ा, आसन रासा त्रिय। गुर प्रसादी आ पोचिन, जीव त्या एव मरिय। माया माया कर मुए माया, किसे ना साथ। हंस चलै उड डुमणो माया भूली आथ। मन झूठा जम जोहा, अवगुण चलै नाल। मन मह मन उल्टो मरै, जे गुण होवै नाल। मेरी मेरी करमुए, बिण नावै दुख भाल। गढ़ मंदर महला कहा, ज्यों बाजी दीवान। नानक सच्चे नाम बिण झूठा आवण जाण। आपे चित्त सूप है आपे जान सुजाण। जो आवै से जाहे, फोन आए गए पछताहे। लख 84 मेदनी कटे ना बधे उताहे। से जन उबरे जिन हर पाया, धंधा मुआ विगोती माया। जो दिसे सो चासी किसको मीत करो। जियो संपो अपना तन मानो आगे दियो, अस्थिर करता तू धनी। तिसी की मैं ओट, गुण की मारी हो मुई शब्द रती मचूट। राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। राहो बुरा भियावला सरनू गरसगा, मैं तन अवगुण झुर मुई। बिन गुण क्यों कर जहा, गुणिया गुणले प्रमिले को तिन मिलो प्यार।
तिन्ही जैसी तीरहां जप जप हृदय मुरार आव गुणी भरपूर है गुण भी बसै नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे विचार लस करिया कर संभले आए वजो लिखाए कार को माव है सिर धड़ी ही लहा पले पाए लभ लोभ बुरियाइया छोड़ है मनो विसार गाढ़ दोही पासा की कदे न आवे हार चाकर कही है खसम का सारे उत्तर देहे वजों गवाहे अपना तख्त न वैसे से प्रीतम हाथ बड़ियाइया जय भावै तै दे आप करे किस आखी है अवना कोई करे बीजो सूझै को नहीं बहदली च पाए नरक निवारण नर है नर साचो साच नाए वण त्रिण ढूंढत फिर ही मन मह करो विचार लाल रतन मोहमान की सतगुरु हाथ भंडार उत्तम हवा प्रभ मिलाए कमन में कह पाए नानक प्रीतम रस मिले लहा लै प्रथाए रस रचना राच जन रची जिन सिरियाकार गुरमुख बेअंत ध्याई अंत न पारा वार अड़ाड़ रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर न कोई अड़ाड़ गरुड़ तुम सुनो हर वसे मनवाए गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम भलाही सो साह साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस्सा बस रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुकटिया हर बरपाया नार सो न रूप सुचया तन काचा विकचार सस दाए सच धन दुबदा होए खुआर सचारी सच संचया साचो नाम बोल हर निर्मायल उजलो पथ साची सच बोल साजन मीत सजान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकर मन वसै हो बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन की ती सो जान बिख्या अमृत वेग है बूझे पुरख सजानो खिमा भी हुणे खप गए खूहण लख संख गणत नावे क्यों गणी खप खप मुए बसंख खसम छाणे अपना खुले बंद न पाए शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापे सदा गुणंतर मन धीर होमे खपे खपाए सी बीजो वत विकार जंत पाए बिच पायन करता लग पार सिष्टे प्यो न जाने कोई सिष्टा करे सो निश्चो होए संपे कोई ईश्वर ध्याई है संपे प्रभु लिखे के पाई है संपे कान चाकर चोर संपे हाथ न चाल होर बिन सांचे नहीं दरगह मान हर रस पी वै छुटे निधान हेर तो हेर तो हे सखी होए रही हैरान हो करती मैं मुई शर है मन ज्ञान हार डोर कंकन कणे कर बाकी सिगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरु पाई हर स्यों प्रीत प्यार हर मन किन सुख पाया देखो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों राखो प्यार हर जपिए हर त्याई हर का नाम उधार लेख ना मिठाई हे सकी जो लिखे हा करतार आपे कारण जिनकिया कर कृपा भगतार कर ते हाथ बढ़ाइया बोझो गौरव विचार लिखिया फे न सकी है ज्यो भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनक भूले पचमुहे उबरे गुर विचार जिर पुरख नदर न आवे तिसका क्या कार कहा जाए बलिहारी गुरु अपने जिन हृदय दिता दिखाए पादा पढ़िया आखी है विद्या बिचरै सहज सवाए विद्या सोदे ततल है राम नाम लिबलाए मन मुख विद्या बिकरता बिख खटे बिख खाए मूर्ख शब्द ना चे नहीं सूझ बूझ नह काए पादा गुरमुख वाखी है चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रो लाहा जागो महले सची पट्टी सच मन पढ़िया सब सुसार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद से सभा कर आसन बैठे सं सभा जयकारो तिस आगै रह रास हमारी साचा प्रपारो मस्तक काट तरी तिस आगै तन मन आगै दियो नानक संत मिलै सच पाई है सच पाहे जस ले ओ क्या पवी है सच सूचा होए सच शब्द बिन मुक्त न हो
ਰਹਾਉ ਕਮਰਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਉ ਤੁਮਾਰਾ ਕੌਣ ਮਾਰਗ ਕੌਣ ਸੁਹਾਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਹੋ ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਲਜਾਓ ਕਹਿ ਬੈਸੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲੇ ਕਹਿ ਆਵੋ ਕਹਿ ਜਾਹੋ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਬਰਾਗੀ ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹੋ ਘਟ ਘਟ ਵੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ ਆਸਣ ਵੈਸਣ ਤਿੰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆਪ ਛਾਣੇ ਸੱਚੇ ਸਚ ਸਮਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਗਰ ਉਤਰ ਗਈਐ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਰੋ ਚਰਪੜ ਬੋਲੈ ਆਉ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਤਿਸਕਿਆ ਉਤਰ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਰਗ੍ਰਾਮੀ ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਾਲ ਮਰਵਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖਾਣੇ ਰਹਿ ਕਾਂਤ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਸੇ ਆਸਾ ਮਾਏ ਨਿਰਾਸੋ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਪੁੱਛੋ ਸਾਚ ਵਿਚਾਰੋ ਰੋਸ ਨਾ ਕਿਜੇ ਉੱਤਰ ਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੋ ਇਹੋ ਮਨ ਚਲਤੋ ਸੱਚ ਘਰ ਵੈਸੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਾਰੋ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ ਲਾਗੈ ਸਾਚ ਪਿਆਰੋ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲੇ ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਉਦਿਆਨੇ ਕੰਧ ਮੂਲ ਆਹਾਰੇ ਖਾਈਐ ਅਧ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਐ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਈ ਗੋਰਖ ਪੂਤ ਲਹਰੀਪਾ ਬੋਲੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਦਪਾ ਸਾਈ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਘਰ ਪਰ ਘਰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਡੋਲਾਈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਮਨ ਟੇਕ ਨਾ ਟੇਕ ਹੀ ਨਾਨਕ ਭੂਖ ਨਾ ਜਾਈ ਹਾਟ ਪਟਣ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਵਪਾਰੋ ਖੰਡਤ ਨਿੰਦਰਾ ਅਲਪ ਹਰ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਗ ਕਰੋ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਮੁੰਦਰਾ ਝੋਲੀ ਖਿੰਥਾ ਬਾਹਰ ਅੰਤਰ ਏਕ ਸਰੇਵੋ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਥਾ ਇਨ ਬਿਦ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰਖਾ ਬੋਹੜ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਈਐ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਮੁੰਦਰਾ ਹੋਮੇ ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਮਝ ਪਰੀ ਹਿੰਥਾ ਚੋਲੇ ਭਰ ਪੁਰ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਏਕ ਹਰੀ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਪਰਖੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਖਰੀ ਉਦੋ ਖੱਪਰ ਪੰਚ ਫੂਟੋ ਪੀ ਕਾਇਆ ਕੜਾਸਣ ਮਾਨਾ ਜਾ ਗੋਟੀ ਸਾਸਾਂ ਤੋਖ ਸੰਜਮ ਹੈ ਨਾਲ

कवन सो आवे कवन सो जाए कवन सो त्रिपण रहा समाए। खट खट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बार सब सुजुक्ता मनुख में सया वै जाए नानक गुरमुख सा समाए। क्यों कर बदा सरपन खादा क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा ओ तत् विचारे सो गुरु हमारा। दुरमत बादा सरमत खादा मनमुख होया गुरमुख लादा सतगुर मले अंधेरा जाए नानको हमे मेट समाए। सुन निरंतर दी जय बंद उड़े ना हंसा पड़े ना कंद सहज गपा कर जाने साचा नानक साचे भावे साचा किस कारण ग्रह तजो दासी किस कारण ए पेखन वासी किस बखर के तुम बन जा रे क्यों कर साथ लगा पारी। गोरमुख खोजत पै उदासी दर्शन कै ताई पेखन वासी साध बखर के हम बन जा रे नानक गुरमुख उतर सपारी। कित विद पुरखा जन बटाया काहे को तुझ इन मन लाया। कित विद आसा मनसा खाई कित विद जोत नंतर पाई बिंदन था क्यों खाइए सार नानक साचा करो विचार सतगुर कै जन में गवन मिटाया। अन्न हत राति ही मिलाया मन सास सब जलाई गुरमुख जोत नंत्र पाई त्रै गुण मेटे खाइए सार नानक तारे तारन हार आदि को कवन विचार कथियले सुन कहाँ कर वास। निरपा कर जाइ सह संदो का आसन जाने को छे देह बराइय गुर के शब्द हमें भिख मारे ता निज कर होवे वासो। जिन रच रचिया ते शब्द पछाण नानक ता का दासो कहा ते आवे कहा हो जावे कहा यो रह समाई। ए शब्द को जो अर्थ आवे तिस गुर तिल न तमाई। क्यों तत्ते अवगते पावे गुरमुख लगे प्यारो आपे सोता आपे करता को नानक विचारो। हुक्मे आवे हुक्मे जावे हुक्मे रह समाई पूरे गुर ते साच कमावे गात मित शब्द पाई। आदि को विस्माद विचार कथियले सुंदर वास लिया अकल पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारी अले घट घट साचा सर्व जिया। गौर वचनी अवगत समाइय तत् निरंजन सहजो लह नानक दूजी कार न करनी सेव है सिख सुखोज लह। हुक्म विस्माद हुक्म पछाणे जी जुगत सच जाने सोई आप मेट नालम होवे अंतर सात जोगी कही है सोई। आवगतो निरमाइल उपजे निर्गुण ते सरगुण थी या सतगुरु पचे परम पद पाई है साचे शर समाय लिया। एक एक सच एका जाने हमें दूजा दूर किया सो जोगी गुरु सब सवाणे अंतर कमल प्रकाश थिया। जीव तमरे ता सब किछ सूजे अंतर जाने सर्व दया नानक ता को मिले वढाई आ पछाणे सर्व जिया। साचो उपजे सास मावे साचे सूचे एक माया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया। आवा गौण मिटे गुर शब्द आवे परक बख्स लिया एक आवेदन दूजे व्यापी नाम सहन विसरिया सो बुझे जिस आ बजाए गुर कै सब सम्मुक्त पया। नानक तारे तरन हारा हमें दूजा पर हरिया मनमुख भूलै जमकी कहाण पर करो जे हाण हाण। मनमुख परम भवै बेवाण बेमार्ग मूसे मंत्र मसाण शब्द ना चिन्ह लवै कवाण नानक साच रते सुख जान। गौरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़ कुड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे। गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख सा समावे गुरमुख परचय भेद विचारी गुरमुख परचय तरी है तारी। गुरमुख परचय सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचय अंतर विद जानी गुरमुख पाई है अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथे विचार गुरमुख निभै सब परवार। गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाइए शब्द चार शब्द भेद जाने जनाई नानक हमें जाल समाई।
ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸੱਚ ਸਾਜੀ ਤਿਸ ਮੈਂ ਉਪਤ ਖਪਤ ਸੁਭਾਜੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਪੈ ਰੰਗ ਲਾਏ ਸਾਚਰ ਤੋ ਪਤ ਸਿਉ ਕਰ ਜਾਏ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਪਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸ ਸੁਧੀ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵ ਜਲ ਉਤਰੀਐ ਸੱਚ ਸੁਧੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਬ ਸਰ ਵਿਦ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਵਿਰਤ ਨਾਰ ਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਹੋਮੇ ਜਾਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਰਤੇ ਭਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਜੀ ਹੋਏ ਨਾਨੁ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬੋਲੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿੰਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਚਾਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵੈ ਸੋ ਪਾਈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਬਦ ਉਜੈ ਲਾਗੈ ਦੇਖੋ ਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਬੜੇ ਸੇਵਟ ਭਾਗੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਵਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਲਹਿ ਲਵਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਖੇ ਰਤਨ ਸਵਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੀ ਕਰ ਕਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਮਨ ਪਤੇ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਟ ਨਾ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਭਉ ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਸ ਸਮਰਤ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਭੇਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੈ।

0: मला तीजा नाग जया सा हाथ वै क्यों नरस होए क्या करे ए हे पपड़ी जा पुलाए सोए पौड़ी त्रिग जीवन सुसार सच्चे नाम बिन प्रभ दाता दतार निश्चल एहे तन सा सास अराधे निर्मल सोए जन अंतर जामी अगम रसना एक पन रब रहा सर्वत नानक बल जाई। श्लोक मल्ला बैला सर्वर हंस तुर ही मेला खसमें इवे पाणा सर्वर अंदर हीरा मोती सोहंसा का खाना बुगला काग न रही सर्वर जे होवे अत सियाणा उना रिजक ना पायो ओथे उना होरो खाना सच कमाणे सचो पाईए कूड़े कूड़ा माणा नानक तिन को सतगुरु मिलिया तिना तुरे पया परवाणा। मतलब पहला सह मेरा उजला जे को चित करे नानक सोई सेवी सदा सदा जो दे नानक सोई सेवी जित सेवी दुख जाए अवगुण वंजन गुण रव है मन सुख वसै आए पौड़ी आपे आप वरदा आप ताड़ी लाइयन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति आइयन एक आपे उजल पायन एक भगती लायन जिस आप जाए सो बुझसी आपे नाए लाइयन नानक नाम त्याई सच्ची वड्याई। सुध राम कलि की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला पंजवां जैसा सास को सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले पर हर गाय का दरगाह का बसीठ हर नाम मंत्र दृढ़ाईदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जना सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुर पूरे दिखा लिया बिन नावै सब बाद साक्त दुर्जन भरमिया जो लगे दूजे साध जन नानक हर प्रभु जिया गुरु सतगुरु कै प्रसाद पौड़ी थटन हारै थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहु आपे ही खटे आपे कर पसार आपे रंग रटिया कुदरत कीम न पाए अलख मटिया अंग मथा बेअंत परे पटिया आपे बड़पा साहु आप भी रटिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहेब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवां सुन सज्जन प्रीत मेरिया मैं सतगुरु देहो दिखाल हो तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा संभाल एक सत
1: सतगुर बहरा तृग जीवन संसार जन नानको सतगुर तना मलायो ना जिन सद ही वर्थे नाल हो महला पंजवां मेरे अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो हे कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो जो मेले प्रीतम मोहे गौरव पूरे मलाया जद देखा तद सोए जन नानक सो प्रभो से ब्या तिस जेवड़ हवन कोई पौड़ी देवन हार ततारो गत मुख सलाहिया जिस रखे कृपा तारो रिजक समाहिया कोई न किसी ही वसो सबना एक तारो पल वाल खवाग देखे आप कारो ਘਰ ਦਾ ਅਣਦ ਬਨੋਦ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਸਰਬ ਧਾਰ ਸਮਰਾਥੋ ਹੋਂ ਦਸ ਕੁਰਬਾਣੀਐ ਗਾਈਏ ਰਾਤ ਦਨੰਦ ਗਾਵਣ ਜੋਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰਖੀ ਬੈਰੀ ਪਾਹੇ ਤਿੰਨੀ ਹਰਸ ਭੋਗਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੀੜੋ ਮੁਖ ਲਾਈ ਕਿਥਿਨੋ ਸਭ ਰਖੇ ਕੁਟੰਬਿ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਨ ਸੋ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੋ ਬ੍ਰਹਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਹਿੰਦਾ ਲੋਹੜੇ ਵਾਲ ਕਪਾਲ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਸਭ ਜੀ ਜੰਤਰੋ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੋ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਨ ਤਦ ਹੋਰ ਜ ਮੰਗਣਾ ਸਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਥਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਗੁਰ ਬਾਣ ਦਿਨ ਹਰਿਆ ਕੀਥਿਆ ਨਾਨਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪੌੜੀ ਸੋਵੈ ਸਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਮਨੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਘੜੀ ਨਾ ਮੋਹਤ ਜਸਾ ਤਿਸ ਬੰਨਾ ਸਰਾਏ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਖਿਆ ਖੋ ਲੁਖ ਕਰੈ ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੇ ਆਪ ਸੋ ਭਵ ਜਲ ਤਰੈ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਤਪਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਖਨੈ ਸੋ ਪਹੁਨਾ ਪਰਧਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲ ਤਰੈ ਜਿਸ ਜਰਾਏ ਆਪ ਸੋਈ ਅਜਰ ਜਰੈ ਤਿਸਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਖੁਣ ਮਨ ਥਰੈ ਸਲੋਖ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧਨ ਸੋ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ ਆਲਾ ਬਾ ਸਭ ਦਿਖ ਜਾਏ।

ते सकाई, जिसन तू संतुष्ट कल मल ते सकाई, जिसके स्वामी वाला नरपो पाई, जिसन तू कृपाल सचा सोधाई, जिसनो तेरी मया न पोहे अगनाई, तिसनो सदा दयाला अचन गुरथे मत लई, सलोख महला पंजमा कर कृपा कर पालो आपे बख्श लाए सदा।

अवतर या अवतार लय सो पुरख सुजान चखड़ बाउन डोली पर्वत में राण जाने बरथा जी खी जानी हूं जान क्या सला ही सच्चे पातशाह जा तू सौड़ सजान दान सतगुर भाव सिंह सो सत्ते दान।

की जय। कोटो छोंती इच्छा करे तन्ना जो हवले गारे राम नाम सारा तो न बीजा पूजा। अस दान गज दान सहजा नारी भूम दान ऐसो दान तन तह की जय। आत्मा जो निर्माण की जय आप बराबर खंजन दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजा। मन न की जय रोस जमिन दी जय दो सौ। निर्मल निर्वाण पद छीण ली जय।